0: हम अब पूछो के तुम क्या हमसे लोगे,
1: पूछो
0: पूछो क्या हमसे लोगे, दिल जो हमने तुमसे बिना पूछ ले लिया पूछो

0: आज तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्र अल्लाहु अकबर अल्लाहु
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्र अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: अल्लाह
1: अल्लाह हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह

हमारे राजस्थान के राजपुताने के, जहाँ से मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, जिला झुंझुनू लूना जयपुर मांड, एक झलक थोड़ी सी पेश करूँगा, उसके बाद आपकी फरमाइश सब रखी हुई मैं पेश करूँगा।

0: मन मंदिर, ये भी मंदिर है।
1: मंदिर माँ सुंदर खड़ी,
0: ये नौकरानी राजकुमारी को देख के अफसोस कर रही है।

0: रेडिओ विश्वास
1: टाइम चेक
0: टाइम चेक
1: रात्रीचे 8 वाजलेत आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 FM. तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
2: This hour is brought to you by
3: Sony Gifts, exclusive range of crockery, appliances and presentation articles. Sony Gifts, Shalimar.
2: This hour is brought to you by
1: Vishwas Cooperative Bank.
4: Sanchayat Samruddhi.
5: नमस्कार नाशिककर, मी विश्वास ठाकूर बोलतोय आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ. तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
6: आता रेडिओ विश्वास ऐका जगभरात कुठेही आणि कधीही. त्यासाठी प्ले स्टोअर वरून किंवा ऍप स्टोअर वरून रेडिओ विश्वास हे ऍप डाउनलोड करा आणि सुमधुर संगीताबरोबरच आस्वाद घ्या दर्जेदार कार्यक्रमांचा. रेडिओ विश्वास, अभिजात संस्कृतीचा सुमधुर आवाज.
7: दिल पुकारा सुनने वाले सभी प्यारे भारतवासियों को प्रांजलि का प्यार भरा प्रणाम. स्वतंत्रता का इतिहास आंखों के सामने रखकर हम सब बड़े हुए हैं. दोस्तों, 2 अक्टूबर इस तारीख को भारत के इतिहास में एक अलग पहचान है. इस दिन 2 नेताओं का जन्म हुआ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री. शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर किसानों को सबसे महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि खेती ही भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला व्यवसाय है.

स्वतंत्र भारत में रहने वाले हर स्वतंत्र सदस्य का आज के प्रोग्राम में फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस स्वतंत्र भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की हार होती है। सत्य शब्द उसके लिए प्रयुक्त है जो सृष्टि का मूल तत्व है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, जो निश्चित है। सत तत्व को परमात्मा कहा गया है। सतयुग में अधर्मी असत के मार्ग पर चलने वाले रावण का वध राम ने किया। द्वापर युग में दुराचारी कंस का वध श्री कृष्ण ने किया। अधर्म असत की हमेशा हार हुए है। जहां असत है वहां अधर्म है, जहां अधर्म है वहां पराजय है। स्वतंत्र भारत की प्रजा संस्कारी हो, सदा सत्य के मार्ग पर चले, इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा दिया। यह नारा राष्ट्रपति पर लाया।

दोस्त लता मंगेशकर ने गाया हुआ यह बड़ा ही अर्थपूर्ण गीत अभी आपने सुना। दिल पुकारा में आज स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र सदस्य के कर्तव्य नीति के बारे में बातें करेंगे। आपने ट्यून किया है रेडियो विश्वास। अभी जो गीत आपने सुना वो लिखा था उद्धव कुमार ने, संगीत से सजाया था जयदेव ने। दोस्तों, क्रांतिकारियों ने कुर्बानी देकर देश को स्वतंत्रता दिलाई, ये तो हम सब जानते हैं। झंडे को हम बड़े गर्व से सलामी देते हैं और राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं, बाद में धूमधाम से छुट्टी भी मनाते हैं, पर क्या इसे देश प्रेम कहा जाएगा? ये सवाल बड़ा ही जहरीला है। हमें देश के प्रति प्रेम चाहिए। जब हम रोज अखबार पढ़ते हैं तो पता चलता है कि देश में क्या हो रहा है। देश के विकास के लिए योजनाएं तो बनी है, लेकिन बेकारी कम हुई है क्या? सही व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचती है क्या? इन सारे सवालों का जवाब अगर खोजना है तो हम संविधान का आधार ले सकते हैं। संविधान में बताए रास्ते पर हर कोई चले तो अखबार की बुरी खबरें ना पढ़ने मिले। पर दोस्तों, क्या करें, सारी बातें दूर रह जाती है और एक ही बात सबसे बढ़कर होती है, मैं और मेरा स्वार्थ। मैं और मेरा स्वार्थ अक्सर ये बातें क्या करते हैं कि धन दौलत होती तो बंगला होता, धन दौलत होती तो गाड़ी होती, धन दौलत होती तो खुशियाँ मिलती, धन दौलत शोहरत दिलाती, धन दौलत ताज दिलाती। दोस्तों, इसी बुरी बला के कारण इंसान सत्य का रास्ता छोड़ता है, अपनों को छोड़ देता है, बिखर जाता है। अंग्रेजों ने इसी नीति का फायदा उठाकर अपनों को पराया बनाकर भारतवर्ष पर राज किया। इतिहास गवाह है कि एकता की शक्ति सबसे बढ़कर है। स्वार्थ छोड़कर आपस में मिलजुल के रहना, यही आज के जमाने में देश सेवा हो सकती है। हमें देश के लिए शहीद तो नहीं होना है, वो काम तो देश प्रेमी कर गए हैं। हमें बस एक साथ रहकर स्वतंत्रता कायम रखनी है।

दोस्तों, एक ऐसा गीत जो किसी समय रेडियो की पहचान बन चुका था, वही आपने सुना कोरस में, बड़ा ही लोकप्रिय बना हुआ था ये गीत। और आज भी उसके माने देखे तो उतने ही काम के हैं। देवी और सज्जनों, दिल ने पुकारा है देश को, देश प्रेमियों को, सच्चे देश प्रेमी जो भारतवासी हैं, सच्चा देश प्रेमी जो और कहीं नहीं आप में मुझ में बसा है, उसे सामने लाना है। अपने खुद में छिपे हुए मैं को निकालकर हमें अपनी तरफ देखना है। स्वतंत्रता के बाद पीढ़ियां बदली, राजनीति बदली, नेता बदले, वैसे तो बदलाव जिंदगी का अहम हिस्सा है, जिंदगी की पहचान है। दोस्तों, एक बात कभी नहीं बदलती, वो है उसूल चरित्र नैतिकता। उसूल चरित्र नैतिकता, इन शब्दों की परिभाषा कभी नहीं बदलती। ये परिभाषा अगर बदल गई तो वो विश्व का अंत समय होगा। दोस्तों, मानव जब इन उसूलों पर चलता है, नैतिकता संस्कारों के रास्ते पे चलता है, तभी उसको खुशियाँ मिलती है, कामयाबी मिलती है, सफलता मिलती है।

पुकारा में आज पुकारा है प्यारे देशवासियों को, दोस्तों सच्चाई के रास्ते पर चलकर मानवता की मंजिल पाना ये हर भारतीय का कर्तव्य है। पिछड़े हुए मुसाफिरों को, दुखियारों को हाथ थाम कर अपने साथ लेके जाना, सहारा दे के चलते रहना, ये हमारा कर्तव्य है। तभी एक मजबूत राष्ट्र कायम रहता है। देश मेरे लिए क्या कर रहा है, इससे बढ़कर देश के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये सोच महत्वपूर्ण है। आशा है कि हम सब विश्वास के साथ एक होकर चले, शांति की ओर चले।

0: दोस्तों, हर किसी की पहचान अपने मिट्टी से है, अपने देश से है, अपने मातृभूमि से है। जहाँ से हम आए हैं उसी में मिट जाना है। इस मिट्टी का तिलक लगाकर चले तो ही सर ऊंचा रख सकते हैं, उसे भूले तो बस शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। कितने ही युगों के बाद इंसान का जन्म मानव को मिलता है तो लोग अपने बारे में ऐसे बोले कि जिए तो ऐसे जिए, इस इंसान के जैसे जिए। मरने के बाद कोई अपने साथ कुछ नहीं लेके जाता, ये समझकर चले दोस्तों तो अपना देश, अपनी मिट्टी, अपनी नदियाँ, अपनी धरोहर बचा के रखें, संभाल के रखें और अपनी स्वतंत्रता को सत्यम शिवम सुंदरम बनाए। इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा लूंगी, तब तक नमस्कार।
1: शिक्षण अर्धवट राहिले, शाळा सोडावी लागली, तर आता शिक्षण पूर्ण करण्याची संधी पुन्हा तुमच्या दारी आली आहे। रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ आणि श्री एपी पटेल हायस्कूल पंचवटी नाशिक यांच्या संयुक्त विद्यमाने विशेष उपक्रम।
2: महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेल्या उमेदवारांना फॉर्म नंबर 17 द्वारे खासगी उमेदवार म्हणून 10वीची परीक्षा देण्याची संधी। यासाठी
1: 5वी किंवा 8वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक। परीक्षेच्या वेळी वय किमान 14 वर्ष पूर्ण असावे। उमेदवार कोणत्याही नियमित शाळेत प्रवेशित नसावा। नोंदणी प्रवेश प्रक्रिया उमेदवाराच्या मूळ शाळेमार्फत पूर्ण करावी। नोंदणी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वावर केली जाईल। प्राप्त होणाऱ्या नोंदणी पैकी पहिल्या 20 पात्र उमेदवारांची निवड केली जाईल। या उमेदवारांना श्री एपी पटेल हायस्कूल तर्फे 10वीच्या परीक्षेसाठी मोफत मार्गदर्शन वर्ग देण्यात येतील।
2: नोंदणीची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर 2026,
1: म्हणून विलंब न करता आजच नोंदणी करा। अधिक माहितीसाठी संपर्क 8380।
3: कार्यक्रमात आता ऐकूयात फिर भी या चित्रपटामधलं रघुनाथ सेठ यांचं गीत। गीताला संगीत दिलं आहे नरेंद्र शर्मा यांनी आणि हे गीत ऐकणार आहोत मन्नाडे यांच्या आवाजात।

बड़ी डिफी बड़ी डिफी कल्टी कल्टी डिफिकल्टी से मिलता है। तकीला नकीला हबहूबा लबालूबा दुम तक दुम

0: तुमचं सुद्धा लग्न ठरलंय का?
1: किंवा तुम्ही रिलेशनशिप मध्ये आहात आणि लग्नाच्या बंधनात अडकायचं म्हणताय?
0: तर मग लग्नाच्या आधी तुमचं प्री मॅरिटल काउन्सिलिंग होणं फार गरजेचं आहे.
1: राष्ट्रीय महिला आयोग आणि रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ यांच्या संयुक्त विद्यमानं आम्ही घेऊन आलो आहोत विवाहपूर्व समुपदेशन तेरे मेरे सपने.
0: त्यासाठी आजच संपर्क करा रेडिओ विश्वासच्या कार्यालयात सोमवार ते शनिवार सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 या वेळेत. अधिक माहितीसाठी संपर्क 02352 47 2626 किंवा 8300 16512 ह्या क्रमांकावर.
2: ये झूमर का गिरना कोई इत्तेफाक नहीं था, जानबूझकर हम पर गिराया गया था.
3: जानबूझकर गिराया गया था, मगर क्यों?
2: हमारी जान लेने के लिए, क्योंकि हमारे दुश्मन को मालूम हो गया है कि तुम मैडम बिलबिलान नहीं हो और मैं पापा खान नहीं हूँ.
3: मगर ये सब कैसे मालूम हुआ?
2: यही तो समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे मालूम हुआ. इस राज को तो सिर्फ करमवीर जी और माँ ही जानते हैं. खैर, तुम अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है.
3: मेरी फिक्र?
2: हाँ.
3: क्यों?
2: अगर तुम्हें कुछ हो गया
3: तो क्या?
2: तो मेरा क्या होगा?

0: नमस्कार, मी अभेद शौनक अभिषेकी. तुम्ही ऐकताय रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ. तुमचं जगणं तुमचा आवाज.
1: नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता छाया, कुछ नहीं हो सकता. मैं ये लड़ाई नहीं लड़ सकता जिसे लड़ने से पहले ही आदमी हार जाता है. मैं हार गया हूं छाया.
2: सुदीप.
1: हाँ छाया, लगता है यहां तो सिर्फ दूसरों के सर पे पांव रख के ही आदमी ऊपर चढ़ सकता है. सीधा रास्ता तो सिर्फ वहां जाता है जहां गुहा चला गया. इस शहर के लोग रोने के लिए कंधा नहीं देते, मरने तक इंतजार करते हैं कंधा देने के लिए.
2: मैं तुम्हारे साथ हूं सुदीप, तुम्हारे साथ छोटी सी खोली में भी अपना घर बसा लूंगी.
1: झूठे आदर्श की बात मत करो, चिढ़ होती है मुझे. घर बना लोगी, कपड़े के लीर का दिया जलाओगी और शाम को आधी सूखी रोटी खिलाकर सोचोगी कि हम लोगों ने घर बना लिया. हाथों में पेट लिए घूमोगी तुम और मैं पेट पे हाथ रखे घूमूंगा. इसे घर कहती हो तुम? नहीं छाया, बहुत देखा है ऐसे पीले चेहरों वाला आदर्श.
2: तुम निराश होगी सुदीप, मुझे विश्वास है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा.
1: हाँ, विश्वास, विश्वास. तुम्हें विश्वास है ना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा? है एक रास्ता है. हाँ छाया, मैंने भी अपनी सीढ़ी चुन ली है. मोदी.
2: मोदी?
1: तुमसे शादी करना चाहता है ना, कर लो शादी. समझने की कोशिश करो छाया, कितने दिन जिएगा और कितने दिन जी सकता है. हाँ छाया, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा. सिर्फ इसके बाद ही हम लोग अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं.
2: छे, किसी की कब्र पे अपना घर बनाऊंगी.

अंत हूँ मैं उस पद का, अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का।

न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानी आई मज मज बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए। न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने।

किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए, जवानी आई मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।